पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 2 बजे

यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।